0: and online ends Tuesday the 16th of June. Club card or app required.
1: It's the most wonderful time of the year.
2: Booking Heroes, a summer holiday in the UK sounds like a great idea. But you know where the weather will be hotter and a pint will be cheaper? Pretty much everywhere. Spain, Canaries, Turkey, Malta, Ibiza, Morocco, take your pick and bag a summer bargain at onthebeach.co.uk.
3: Apturn Atoll protected.
4: On the beach. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. This is Sunrise, the UK's biggest.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टेकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं, चलने के लिए कहीं

तया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने।

0: Nightlife on Sunrise.
1: कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Taken from the film Fana, Sonu Nigam, Sunidhi Chauhan. Singing for Aamir Khan and Kajol, Dekho Na. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूजडे द 16th की सुबह शबनम साही के साथ डीना इन गिनफर्ड गिल्डफर्ड उमर इन मैनचेस्टर प्रवीण इन क्रोली कृष्ण जी इन हेज दिव्या इन हैरो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस डैवलिंग्स इन बर्मिंगहम वुड लाइक टू विश हाइडी कैथरीन एंड सांड्रा अ वेरी हैप्पी बर्थडे फॉर टुडे राइट दैट वाज आवर लिसनर्स चॉइस आई थिंक
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी
2: बहुत हुआ सेटबैक अब होगा मेरा कमबैक
0: A dream waiting to be revived. Watch Dr. Arambhi Monday to Friday, 7 p.m. only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा hit of the hour. Listing someone's qualities, the things that you love about them. Done the Bollywood way, of course. Taken from Chand Mera Dil. हाँ यही तो खासियत है आपकी हाँ

0: Time check with Brightson Travel. Brightson Travel is giving away four amazing prizes in their 40th anniversary competition. Win holiday vouchers worth £2,000, a weekend in Barcelona, and much more. To enter, visit brightson.co.uk/win.
1: 9:50 on a gloriously sunny Tuesday here in London. आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ किशोर कुमार रैपिंग अप दिस आवर. ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए. टेकन फ्रॉम द फिल्म मेरे जीवन साथी. गुड मॉर्निंग.

0: The Sunrise Radio Traffic and Travel Update, brought to you by GDK. Hungry? Go large. Donut boxes now available in regular and large. More flavour packed in. GDK. Kebabs done right.
1: Looking at the M25 anti-clockwise between junctions 29 and 28. Delays of 35 minutes against expected traffic. There's a broken down vehicle there. That's the M25 anti-clockwise between junctions 29 and 28.
0: The Sunrise Radio Traffic and Travel Update, brought to you by GDK. Hungry? Go large. Donut box is now available in regular and large. Big box energy. More flavour packed in. GDK. Kebabs done right.
1: Mr. Khan arz karte hain. Chalaye teer to kis kis ne lekin. Chalaye teer to kis kis ne lekin. Mera qatil koi tere siwa nahi. Bichhad ke jaan tere aastaan se. बिछड़ के जान तेरे आस्था से, लगाया जी बहुत पर जी लगा नहीं. पूजा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फोटोग्राफ्स दैट यू हैव सेंट मी. लेट मी हैव अ क्विक लुक. पोस्ट बर्थडे ग्लिम्पसेस, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. राइट, कुदरत 1981. इफ देयर इज नथिंग पीपल नो अबाउट दिस फिल्म, दे नो द फैक्ट दैट दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू कुदरत. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना.

0: पिछले साल की फिल्म लवयाप्पा का ये गाना जुबिन नौटियाल ज़ारा एस खान की आवाज में, सिंगिंग फॉर जुनैद खान एंड खुशी कपूर, टू स्टार किड्स, रहना तेरे कोल। कभी कभी सोचती हूँ कि बॉलीवुड में कोई स्टार किड ऐसा होगा जो अपने माँ बाप से कहता हो कि मुझे ना प्लीज गलती से भी फिल्मों के आसपास भी नहीं जाना, प्लीज मम डैड मैं कुछ भी और करने को तैयार हूँ। आई डू नॉट विश टू हैव दिस लाइफ। आई एम प्रीटी श्योर देयर आर मेनी किड्स एंड आई थिंक दैट्स ट्रू ऑफ ऑल किड्स, नॉट जस्ट बॉलीवुड किड्स, राइट? आइदर दे विश टू एम्ब्रेस द एग्जैक्ट सेम जर्नी दैट देयर पेरेंट्स हैव बीन ऑन, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट द रिवॉर्ड्स एंड द पिटफॉल्स आर, or they wish to completely steer clear and do something on their own, right?
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday, 9:25 PM, only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Afsana Khan and Rebel on the vocals from Dhurandhar. Nal Nachna on Sunrise.

0: What am I? 07925 700 272. Answer after the break.
1: बचाए जो सबको कहलाए देव, मारे जो सबको कहलाए दानव. इन देव और दानव के बीच कहा है दानव?
2: In this life, everything comes at a cost, be it friendships, relationships, family, and even redemption. As sin overflows, Brown is back in Kolkata to deliver justice. Join her in her mission. Watch Brown, starring Karisma Kapoor, now streaming only on Hindi Z5.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply. Enjoy your tea time with its perfect partner, Meher's Premium Handmade Eggless Gur Rusk with the goodness of jaggery. Available at all quality food outlets and other leading ethnic outlets across the UK.